0: सैलुन सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुन समाचारको सहयात्री।

सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज। लागि संचार रेडियो सैलुङ।

नमस्कार, रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्जबाट म बद्री प्रसाद साहबबाट आज विक्रम सम्मत 2083 साल श्रावण शुक्ल पक्ष सन् 2026 अगस्त 22 तारीख भाद्र 6 गते शनिबार दशमी तिथि भोलिको एकादशीको नाम पुत्रदा हो। यहाँले खुब सम्झिनु होला पुत्रदा एकादशी भोलि। अब स्तुति गरौं। आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पै भरि।

आनन्द कन्द श्री सच्चिदानन्द भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। प्रेम चित बोलिए श्री आनन्द कन्द सच्चिदानन्द भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। सबै गुरु परिवार को जय, सबै संत महात्मा को जय।